पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ आखण योखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखाए खाए चलिया है दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचा नाय रहाओ साची नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे घट ना जाए ना ओह मराए ना होवे सोग दिंदा रह ना चूके भोग गुण एहो होर नाही कोई ना को हुआ ना को होए

तेरी क्या गुण अखब खाना, जो सेवा है जो सेवा है तुझ जी, जा नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तू जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुक्त भय, जिन हर त्याया जी तिन टूटी, जम की फांसी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ, त्याया जी तिन का पहो सब गवासी। जिन सेवे आ जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तहन जिन हर त्याया जी, जा नानक तिन वल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता, तेरी भगत सालाहन तू जी, हर अनकानेकानंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी, तपता पहज पह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ हम्बो सिमरत सास जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावे है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जी वडे अवरण कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुझे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे कर है सो होई। तुझे आपे

चौथा तुम करता उन सच्चे अर मैडा साई जो तो पावै सोई थी सी जो तू देह सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनु कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेर विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेर जिसनु तू जाना है सोई जन जाना है हर गुण सद ही आख बखाना है जिन हर से बेया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए तू कर कर विखा है जाना सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवर डाय पै लिन वासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक न चित समूण बनाओ हर बिस्रित तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पहया प्रणमत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही भी सरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी भरिया अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग भाव जल तरण कै जन्म वृथा जाते

Ciao, poi. पुनराच का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोह पन ब्रिष्ट गगन ते पई सब हिन्यान वधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीबन वाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान महल उबारे कबि उबाच बेनती चौपाई।

प्रत पारा हमरे दुष्ट सबत मुकाब हो आप हाद मोह बचाब हो सुखी बसाई मोरो परवार सेवक सिख सब करतारा मोर छाव निज कर दय करिए सब एरन कवाज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम तो छाड़ कोई अवन त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारी मारिया है आप हाद मुझा अबरिया मरण काल का त्रासन वरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस धुज जो करे हो रच्छा राख ले हो मोह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुमहु पुरी चातुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मासा

कहूँ बैठा हो कहूँ सिमट पर शंकर काठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुर्ट जिते। उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तो जो तब सरणी परे तिनके दुर्ट दुख हमरे। पुरख जमन पग भरे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी।

दुष्ट अरिष्ट अनंत काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक में हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुर छा छिप सकै न कोई एक बार जिंत में संभारा काल फास्ते ताहु बारा जिन नर नाम तिहारू कहा दर्द दुट दुख ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दैलिहु बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता श्री अस तुज जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन वांछत फल पावै सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ैल सुने गोंग जो जाहे सो रसना पावई सुना मूड चित लाई चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नरक रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीरुस तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त आप जून दोहरा

चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग में दो चलै राखिया मोह आनंद लै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहि मैं दास हारा जान अपना मुझे नवाजो आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपी आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जानो करो प्रतपारा तुम साहि मैं किंकर थारा दास जान दै हाथ बारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को त्यना बहुर करो कविता विदनाना कृष्ण जत्था मत उचरित चारु चूक होए कबल्यो सुधारु कबियो बाचु दोहरा जो निज प्रभु सो कहा सो कहूँ जग माहे ज्योति प्रभु को त्याय है अंत स्वरूप को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार कछ नाहे जल ते उपत रंग जाऊं जल ही बिखाई समाए दोहरा

सिमरत शास्त्र वेद सबै इम भेद कह हम एक न जानेउ। श्री अस्पानु कृपा तुमरी करू मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कह गहो तुहारो द्वार बाहें गहें की लाजे अस गोविंद दास तुहारू। सगल द्वार को छाड़ कह

रंग ना सात रूप रंग ना जात बात सो जा नहीं कह जे तात मात ना जात जाकर जन्म वरण बहीन चक्कर बकर फिराई चतर चाक मान ही पुरतीन लोक चौदह की बिखा जग जा पई जह जाप आदि देव अनाद मूर्त थापे सब है जी थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सर्व चेस जम पर करण भजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम स परम रत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भजन मुक्तदाय काम आप रूप अमीक अनुसत एक पुरख अवधूर एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सरपंजन याद रूप सूत अंग हीन अभंग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन भेख सर्व शासन न जान ही जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नित भाग नितो कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवि वह चेतो मद पार छंद प्रसाद गुण गान उदार महिमा पारासन भंग भवाना गर भव प्रकाश निस्तर नास आजन बाहु साहु साहु राजन राज भान भान देवन देव मा महान इंद्र इंद्र बालन बाल रंग कर रंग कालन कालन भूते अंगा भंग अभा भंग आत्मित पार गुणगर उदार मुनगर परिणाम निर्भैनी काम आत प्रचंड मितगत अखंड वाली सह कर्मा दृश्य धर्म सर्वा परना डैंडन वाडैंग चाचरी छन त्वै प्रसाद

चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे पवित्र प्रतिसा अधिसा अदृशा कृसा भगवती छंद प्रसाद कथते के अछिज दिशा के अभिज पेशा के अगंध कर्म के अपंज परम के अभिज लोक के अधिलोक के अवधूत वर्ण के उत्करण के राजिंग प्रभ के त्रमंग तुझ के सुख वर्ण के श्रभा पर्ण के जगदंग कृतिय के चतरंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुप के अधेव के अपेव के चतरंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर ही मार हक के पाक पे अब के गैब गैबे के अफल गुना ही के साहन साहि के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज करी ही मैं के कर्म करी मैं के सर्वम कली है के सर्वम दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणाय के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र भिषा के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान के सर्वत्र जाप्य के सर्वत्र थाप्य के सर्वत्र पहना के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्रय के सर्वत्र चंद्रय के सर्वम कलीम के परम अफीम के अकल अलाम के सह कलाम के उसनर वजू है तमाम रजू है मेसुर सलाम सलीखत नाम गनीमल सकस्त गरीबल प्रस्ताव लांदल मकान जिमिर जमान तमिजल तमाम रुजल नदान हरि फल जी मर जाग जगीन अनेक तरंग है भेद है भंग है जीजल नवाज है गरिमक राज है रोकत स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है पर भुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सुर साज है समस्त सलाम सदैव काम निर्बाध रूप अंगाद रूप ओ अंगाद रूप नास रूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभर्ग त्रिवादी अगंजे अगाधि सुभंग त्रिभागे सुसरभा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है छेज है छूत है कि नरगुण प्रणास है प्रीत पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभ सदैव सदैव विभुगत स्वरूप है पर युगता रूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है पर युगता रूप है चाचरी छंद भंग है नंग है अपेख है लेख है पर मैं कर मैं अनाद जुगा दया जय है वह है भूत्या धूत्या नास है दास है तंद है बद है अभगत है बरक्त है नास है प्रकाश है नचिंत है सुनंत है लिख है दिख है लिख है भेख है ढा है गा है सब है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है जात है जात है चरपट छंद प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हता सर्वं कर्ता सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं कर्म सर्वं धर्म सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद प्रसाद नवो नरकनाशी सदैव प्रकाशी अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मत न जात न पात न साख श्रीक मित्तो मीक सदैव प्रभ अजय अजाहय भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है मेसुर सलाम है समस्त कलाम के साहिब दिमागे के उसल चलागे के कामल क्रीम है के राज करीम है के रोजी देहंद है के राज करिहंद है करी मुल्क माले के उस जमाले गरी मुल्क राजे गरीब नवाजे हरि फल सकन है हरासल फिकन है कलंक प्रणास समस्त निवास है गंजल गनी में रजाय कर रही मैं समस्त जुबा है के साहिब करा है के नरकु प्रणास है बहस्तल निवास है के सरबल गवान है मैं सुर रवान है
ਤਮਾ ਬੁਲਤ ਜੀ ਮਹਿ ਸਮਸਤਰ ਅਜੀ ਜਹੈਂ ਪਰਮ ਪਰਮੀ ਸਹਿ ਸਮਸਤਰ ਅਦੀ ਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਲੇਖੈ ਮੈਂ ਸਲ ਭੇਖੈ ਜਿਮੀ ਨੁਰ ਜਮਾਹੈ ਅਮੀ ਕੁਲ ਅਮਾਹੈ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਮਾਲੇ ਕੇ ਜੁਰਤ ਜਮਾਲੇ ਕੇ ਅਚਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਪਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿੱਤੋ ਭੰਗ ਹੈ ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਰਮ ਦਾਮ ਅਰਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਮੰਡ ਅਰ ਭਵਨਾਸ ਮੋਹਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮਦਾਮ ਅਨ ਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਾਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨ ਭਵਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰਸ ਆਦਨ ਬਾਹੇ ਕਸ ਦਾਹੋ ਓਅੰਕਾਰਾਦ ਕਥਨੀ ਨਾਦ ਖਲਖਣ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਣਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਅਜਿਜ ਬਾਤ ਅਜਿਜ ਨ ਬਾਤ ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਜ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਠੱਟ ਉਪਾਰ ਆਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਣ ਬ੍ਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤੋ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾਉ ਛੰਦੋ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਣਾਲਹ ਹੈ ਅਰਕਾਲਹ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਾਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨੈ ਹੈ ਜਗ ਜਨ ਹੈ ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸੈ ਹੈ ਸਰਬਨਾਸ ਹੈ ਕਰਣਾ ਕਰ ਹੈ ਬੇਸਵੰ ਪਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਣਾ ਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਥਪਾ ਥਪ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਧ੍ਰਿਤ ਅਮਤੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾਏ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾਏ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਯ ਹੈ ਨਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ ਪਾਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਕਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦੇ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਸਾਂ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਨਮੋ ਮਨ ਪਰਮ ਤੰਤੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗਸਾਂ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਧ ਜੁਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੈ ਨਾਦਨ ਦੇ ਭੂਤੇ ਕਲੰਕਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸਾਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਪੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਕਾਮੇ ਕਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜਾਏ ਅਲਾਏ ਅਭੈ ਅਭੈ

लेखी भुजंग प्रयात छंदे नमस्त्र प्रणामे समस्त प्रणासे अगंजल नामे समस्त निवासे इंद्र कामंग विपुते समस्त स्वरूपे को कर्म प्रणासी स्वधर्मंग विपुते सदा सच्चिदानंद स्थम प्रणासी करी मुलक निंदा समस्त निवासी अजायब भूते गजाब गनी में हरियं करियं करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजयम पहु सुभंग सर्वदा सर्वजुगते

कहूँ राजा हूँ बैठा कौन से मठ भय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंभव आद जुगाद स्वरूप सजंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वर सिख संग्रह दृढ़ जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस धोज तब सरणी परे तिनके दुख दुख हम मरे पुरख जन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल लिखन है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट रहितर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनक मैं हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुर्चा सब सकै न कोई एक बार जंत मैं संभारा काल पास ते ताहु बारा जिनरा नाम ते हारू कहा दर दुर दुख ते रहा खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहु बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुर दुख ते लिहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किलबिक सकल देह को हरता दुर दुखियन को छह करता श्री अस्तो जो जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल पावे सोई दुखनाथ सह व्यापत कोई अड़ेल सुनै गोंग जो जाहि सरस न पावई सुनै मूल चित लाए चतरता आवई दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नर के रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पुण जाए अर्ध सहस पुण तीन कही जाए भाद्र सुधी अष्टमी रवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधाराओ सवैया

सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह है हम एक न जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हिब खाने ओ दोहरा।

कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सार कुदरत पाताली आकाश कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कते पा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जान।

पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन्हें विचों मोह चुकाया। उत्तम यह विचार है जिन्हें सच्चे सोचित लाया।